0: कहानी राणे सुनाने गए हैं। नानी आना हुआ Sam Queen 327988 SQ 327988
1: Brandon Thompson, not valid, negative.
0: Copy, thank you.